बेशक बहुत ही खूबसूरत कलाम और काफ़ी लोग प्रोग्राम इंजॉय कर रहे हैं. फातिमा एडम्स और मेरी प्यारी दोस्त शायदा पाकर भी कह रही है कि शी इज़ इंजॉइंग द प्रोग्राम एंड शी सेज आई गॉट अ ब्यूटीफुल वॉइस. जज़ाकल्लाह खैर. और प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए गज़ल सेगमेंट में हमने लिया है जगजीत सिंह की आवाज़ में हाथ छूटे भी तो.

ये थे जगजीत सिंह साहब, जो कहते हैं हाथ छूटे भी तो रिश्ते नहीं छूटा करते, इवन दो यू लीव योर हैंड्स योर रिलेशंस डोंट ब्रेक. तो रिश्ते को संभाले, रिश्तों को संवारे, कोशिश करे. मुश्किल होता है लेकिन नामुमकिन नहीं. बाज़ वक़्त हम इंसान हैं और शैतान की वसवसे की वजह से हम रिश्ते तोड़ते हैं, लेकिन कोशिश करे कि रिश्तों को ना तोड़े, जोड़े रखे. रबीउल अव्वल का प्रोग्राम जारी रखते हुए ये स्पेशल प्रोग्राम कर रहे हैं हम. अगला कलाम मेरे सरकार.